दावों के बोझ में झुकाए, विश्व देना तो खुद पापा ने सिखाए। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी और लाछड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा।